रेडियो अमल जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज़्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा।

क्या आप चाहते हैं कि आपका कारोबार एक नए बुलंदियों तक पहुंचे? क्या आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत का हर लम्हा आपके लिए फायदेमंद साबित हो? तो देर किस बात की, हम आपको दे रहे हैं वो हल जो आपके कारोबार को देगा एक नई रफ्तार। हमारी ये खिदमत आपके कारोबार को नई मार्केट तक पहुंचाने में मददगार साबित होगी। आज ही हमसे राबता करें और अपने कारोबार को बढ़ाने का ख्वाब हकीकत में बदलें, क्योंकि कामयाबी के सफर में हम हैं आपके साथ। राबता नंबर 0345 93 32 580।

0: 가.
1: कल की यादें आज के लम्हे और आने वाले कल की उम्मीद सबको जोड़ती एक आवाज़ रेडियो अमन 88.4 तरफ हर वक्त आपके साथ।

मुस्कुराहटों के लिए खुशियों की आवाज़, आपका अपना रेडियो हर पल आपके पास, तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 करक, जवान रंग अमन।

0: हुआ।
1: अच्छा वही कहना हल्का सा मुस्कुरा दो तो लाजवाब लगते हो। ओए होए होए होए ऐसी भाई जानी आई एम खुशी खान खाचा खे खुशी खान खाचा खरखना यो जहान मनना इज्जत मन से कदर मन से वही सलाम ठांग ना आनस खानिया आनसा यो जहान मनना जे ठांग ना और जाना खुशल हो से वैसे हेलो एंड हाय सलाम गुलगुल एंड बुलबुल राज भाई हाउ आर यू माय सलाम टू रुशिहान मारुश एंड ऑल साइलेंट एंड वायलेंट लिसनर वैसे टफा डेडिकेटेड फॉर यू वैसे सिफात प्रोग्राम बा वाले हैस्तान नवी वाजे वाह सिफात प्रोग्राम बा वाले हैस्तान नवी छे राज हान ये अमन रेडियो करक राता कवीना वाचे देर पुजरा पोरे और ठांग बने खकम ऐसा वैचे आपकी सबसे छोटी सिस्टर सुंदर सटक राम अच्छा कंदा से रचेलना है जी सुंदर तेमो को रखे यो जहान मन नाना नम्र अक्षले दफा थैंक यू सो वेरी मच वैचे बाई इट्स मी छोटी हादिया बाई आपने कल एसएमएस क्यों शामिल नहीं की थी भाई जान आज शामिल करो भाई बस कल से कॉलेज ओके जी छोटी हादिया यो जहान मना मैसेज शामिल छो वरुण वाला में हा देता बिल्कुल फर्स्ट के शामिल करी देता बस टेम मजबूरी भी टेम हाथम से कैसा गुड मॉर्निंग स्टार भाईया कैसे हो उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल खैरियत से होंगे शो डेरा लश बश दो आपकी फैन देवा महसूल प्रोग्राम के हर कल और जाने मैसेज का बोलो यो जहान मानना थैंक यू भाई खाना छो भाई डेरा लश बश शो दवाई देवा यो जहान मानना थैंक यू सो वेरी मच भाई इसमें छोटी हाजिया भाई भाई भाई जुकाम मेरी मलेरिया मेरा भाई तो सेहत खराब हो सरेंगे राजा बिल्कुल ठीक ठाक है दुआ गुन की मोत हाथ दुआ गुन कवे चल रहा ठीक ठाक ओके जी चो ले दुआ गुना वाके छिछुटी हाथ जैसे देखे ना हाँ ठीक शीशा भाई भाई दुआ गुना

0: ना।
1: अच्छा भाई कना भाई से तो आवाज से दादा ढेर मजे दौड़ दे जी माशाल्लाह
0: बदल सीना
1: कैसे हो आप सबको मेरा सलाम आई माँ क्रिकेटर फ्रॉम डीआई खान थैंक यू सो वेरी मच डीआई खान ना यो जहान मना खुश हो पहला मैसेज कर दा तो फैमिली के जे वेलकम हर कल भाई चेरन जो गम से बेहबर के कहीं मुस्कुराखे ना ठाल दे दानिश जंजुआ घर अच्छी ना ना जिला ठांग ना जी ओके जी दानिश जंजुआ यू जहान मना ठांग ना खुश और दुन को कैमरो सर हाँ खादम जो भाई हाय माय फर्स्ट मैसेज यू आर शो कैसे हो आप सबको मेरा सलाम जी अच्छा ओके जी दादू बराम मैसेज रो गलत हाँ थैंक यू सो वेरी मच जी नेक्स्ट भाई सलाम ना भाई वेलकम टू द शो सरंग ये राज भाई रिजल्ट अब नन अरसी का ना ग्यारह टू अच्छा हाँ ग्यारहवीं और बारहवीं क्लास वाला हवाई आई एम साथ हटक फिलहाल कोई पता नहीं था हमदा वेल्यू का ना छह दस ना पंद्रह तारीख पुमास के मुतवक्की डेट थी और यहाँ का कंफर्म शो तो ये मक्ता प्रोग्राम के इंशाल्लाह हम सर तरह से दरा अच्छा मैं आवाज हो रही तो कागज ठान खबरी दुन की थी या देखा रहा खबरी दुन की थी यो जहान मना देंगे सुबीर माँ चाहो खास बोला तो उस है और देश सरा सरा जी चारों तमेश रोकर चारों तो काल वोकर अहो है यो जहान मनना इस बात कॉस्मेटिक सोलह हाचे प्रोडक्ट थी पल निज दी पछतना वक है तो हर जनरल स्टोर कॉस्मेटिक स्टोर के मिलावे जी बेहतरीन रिजल्ट पर देख कभी जी मोदी सराह जी मोदी सा पछतना कवल गोड़ है इस बात कॉस्मेटिक जी हेल्पलाइन नंबर 0313-97-65-005 मंदे आगा तो सिर्फ इताक का वलश है चलता वे खुशाला उस हैबाद अच्छा मैसेज पोजिशन आगे ना भाषण मदर रहा इंशाल्लाह सब तो ब्याह शामिल हुआ जी खुशाला उस हैबाद उस है उस पर रुख है मुता इजाजत बता दो गानों सर आए जी जी ढेर कामयाब मोगोड़ा ढेर ढेर पहर सर है मोगोड़ा और प्रोग्राम की सदा से खबर है शब निशान भी आगे के बख्शन मदर सब तो ब्याह सर मुलाकात कीजिए 11-12 बजे पर इससे बाद कश्मीर प्रोग्राम के रूप का इजाजत

0: इश्मा कोल करीम
1: तो जयम शपक सहर दिल की मरमत ना जमा इंतहाब दे इश्मा फार्मूला ब्यूटी क्रीम
2: तो जयम सोफिया जमा इंतहाब दे इश्मा फार्मूला ब्यूटी क्रीम
3: स इश्मा वफाया दि बन्नुना दि जमा इंतहाब दे इश्मा क्रेक क्रीम
4: जयम सनम गुल दिल की मरमत ना जमा इंतहाब दे इश्मा एक नई जॉब
5: जयम उजाला फ्रॉम ब्यूटीफुल करक जमा इंतहाब दे इश्मा डे नाइट क्रीम
6: ज़ेम
7: सादिया द फकीर कलीना ओ जमा इंतखाब दे इश्मा फार्मूला

मुस्कुराहटों के लिए खुशियों की आवाज, आपका अपना रेडियो हर पल आपके पास, तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 करक, जवन रंग अमन।

अच्छा जी, नेक्स्ट का नाम वही छिमी क्यूट। हाँ स्वीट भाई जानी, सनप मुझे मुझसे कह रही थी कि तुम्हारी रेडियो में ऐसा क्या खास बात है कि तुम हर वक्त रेडियो चल।

ओके जी वेके अच्छा क्यूटर जी हाँ जी तुम्हारे रेडियो में अच्छा सनब मुझसे कह रही कि तुम्हारे रेडियो में ऐसा क्या है क्या हास बात है कि तुम हर वक्त रेडियो सुनती हो. मैंने कहा कि मेरे रेडियो में सोहराब के पर लगे हुए हैं वाजी. अच्छा जवाब देवर खड़ा ऐसा वैसे मैं क्यूटर जी हाँ स्वीट भाई जानी मैं साथ साथ काम भी कर रही हूँ आपकी शो भी सुन रही हूँ और माशाल्लाह माशाल्लाह. अच्छा सही अच्छा इस तरह की तोरिका वही इस तरह की दे तोरिका कहना वेल डन नजर न लगे माशाल्लाह वही शो शोस्त है ना खड़े यू जहान मना खो रखे वही मैं क्यों हाँ स्वीट भाई जानी फार यू वही साल

0: रेडियो अमन, कभी नरम कभी गरम। म्यूजिक, मस्ती और खूबसूरत पैगाम हम लेके आएंगे मोहब्बत के एहसास का खूबसूरत अंदाज। रेडियो अमन, आपके मन का अमन। मन का अमन।
1: रेडियो अमन करक आपको दे रहा है एक खुशखबरी। अब आप अपने दिल की आवाज़ रेडियो अमन करक के साथ मैसेज के जरिए भी शेयर कर सकते हैं। अब आप हर प्रोग्राम में फॉर्मेट के मुताबिक अपनी फरमाइशों और चाहतों का इजहार मैसेज के जरिए कर सकते हैं। मैसेज करने का तरीका बहुत ही आसान है। अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएं, वहां पर टाइप करें RAK, फिर थोड़ी सी जगह छोड़कर अपना नाम लिखें, फिर अपने इलाके का नाम और अपना पैगाम लिखकर हमें 8583 यानी 8583 पर भेजें। आपका मैसेज हमारे प्रोग्राम की रौनक।
2: क्या आप चाहते हैं कि आपका कारोबार एक नए बुलंदियों तक पहुंचे? क्या आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत का हर लम्हा आपके लिए फायदेमंद साबित हो? तो देर किस बात की, हम आपको दे रहे हैं वो हल जो आपके कारोबार को देगा एक नई रफ्तार। हमारी खिदमत आपके कारोबार को नई मार्केट तक पहुंचाने में मददगार साबित होगी। आज ही हमसे राबता करें और अपने कारोबार को बढ़ाने का ख्वाब हकीकत में बदलें, क्योंकि कामयाबी के सफर में हम हैं आपके साथ। राबता नंबर 0345 93 32 580।

बिल्कुल जी, खुजिफा कंपनी शिफा ब्यूटी क्रीम दिमाग सफये खुशलवली स्पिनवली दिपरा इस्तेमाल कीजिए। यो आदत खुजिफा कंपनी शिफा विटामिन सी फेस वाश या दवरीज व्रिजे फेस वाश राइस फेस वाश दावर सरा इस्तेमाल के दबर कलीजा।

अच्छा बड़ा खबर है, स्किन पॉलिश अला शाबस रवाला जी रवा इखलास दा दा जी मो पलोस शदाय स्किन पॉलिश द खुजिफा कंपनी खुजनाब दा में हा चाहता रोखस्ता है ओकना रोना गोष्टा है वो डेर पटिंग सरा वेल च खुजिफा कंपनी शिफा स्किन पॉलिश शुरू रे नो नन में वरता रोड़ा जाए और जनाब तुसिता में हाँ तो प्रोग्राम के रोड़ी दीजिए तो तुसे इस्तेमाल के लास्ट पिन जलास मिनटा जरूर ये पदे पल मखीना लूज पशे वाला कर देता सीधे आखिर न बात पाता देता वाला की चे स्पिना वाला हाँ के जी दासे न दो चे मख तेर सी बेस्पिने जी ना जी वेले न स्पिने जी दा गाज और दा मैदान वे लगा वही खुजिफा कंपनी शिफा स्किन पॉलिश और द स्पिन वाले इंतजार लास्ट मिनट आप पिंजा लास्ट मिनट आओ करें।

हाँ जी नोबेल कला तुझसे मुत अपने लाइव कॉल रोत लाला इशू लाइव कॉल रोत खवाला इशू दलाइव कॉल नंबर दे जी 0330 0344 717 यानी कि 0333 बे 0 0 बे

0: तड़ाई माजे में जी दार तो ये जी पता शापर सी देता शाय हो कस दी दी
1: जनाती से तारखना पर शापर के हम इश्मा वाशिंग पाउडर हो कस दी
0: इश्मा वाशिंग पाउडर मड़ाई में जी मोह कोरता नेशनल और मल्टी नेशनल कपने वल वाशिंग पाउडर वड़ी भी कुर्श अक्सर गिलार तक की जी दस रंगे सरा प्रोवरे
1: बिल्कुल तारखना दा गिले वे हर वक्त मुताहा कुर्श कड़ाले हो चे कराना में कुरता इश्मा वाशिंग पाउडर वडल से रिकड़े दी और स्टूल कुर वाला ना फसूल दी
0: अच्छा मिस जी ब्याह कुर्ता जहर सराबरो वो दर तो ये या चेप इश्मा वाशिंग पाउडर से सदा से खास खसूसियात थी
1: तारे खाना इश्मा वाशिंग पाउडर खास खसूसियात दागा दी चे कपड़े सब युक्शले को जोर ना जोर दाग पर गारंटी सर खत्म करी जाकर सजूत की वो दिनोर सरफे पर नस्बात इश्मा वाशिंग पाउडर काम इस्तेमाल जी वो बला खबर दा कपड़े सब ही पवा लोसीना नखर पवी
0: शाह मिस जी चे दम रक्षला रिजल्ट ये दाए दर तो ये दाओ मोता चेरता मिला भी जी
1: तारे खाना दाओ तो दफा बने गलशे अंदरून ला की गेट जान से बे गाले पर शोए मार्केट से देश मा मेन डिस्ट्रीब्यूटर हाफिज जहीर साहब सर उधर ते मिला भी जी।

रेडियो अमन 88.4 करक रवड़ी स्तासु दपारा दस्तासो फखे प्रोग्राम जड़ा यदुना पदी प्रोग्राम के बा इलाकई संदरगाड़ो सरा नोरा जड़े संदरे अवरेदले शे प्रोग्राम अवरेदल माही रवै धार जुमरात पशपे लस बजोना तरदुल सु बजो परे पल कुर्बा अख्तर नवाज सरा रेडियो अमन द रोहाना सबाउन गल्त।